दिल ने पुकारा। इस प्रोग्राम में अभी आपने गीत सुना फिल्म नास्तिक से, गाया था हेमंत कुमार ने, संगीत से सजाया था सी रामचंद्र ने और गीत लिखा था प्रदीप ने। दोस्तों आज आसमान पर आधारित गीत सुनेंगे। आज आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8। आसमान सब देता है, धूप वही देता है, छांव वही देता है, पानी वही देता है। आसमान पृथ्वी के ऊपर स्थित वायुमंडल की वह परत है, सतह से देखने पर एक गुंबद की तरह दिखाई देती है। यह परत हवा, मौसम, बादलों, खगोलीय पिंड को समाहत करता है। दिन में नीले रंग या यह दृश्य शाम में काला दिखता है, जिस पर अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं।

हमराज इस फिल्म से गीत आपने सुना, गाया था महेंद्र कपूर ने, लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत से सजाया था रवि ने। दोस्तों आज सुन रहे हैं कुछ आसमां वाले गीत। दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। आसमां ही स्वर्ग है जहां फरिश्ते रहते हैं, चंद्रमा सूरज वही रहते हैं, तारे बस्ती करते हैं। यह आसमां कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है कोई नहीं जानता। मनुष्य चांद पर जाकर आया, बाकी सारे तारों पर भी जाने की सोच रहा है। बड़ा ही संशोधन हो रहा है, अवकाश में उसने स्थानक भी बना रखा है। पर क्या सचमुच ये आसमान पर पहुंच जाएगा? बादल जमी पर भी उतरते हैं पर आसमां को कोई छू नहीं पाया है आज तक। दूरी से आसमां नाम के किसी अस्तित्व की चर्चा होती है, होती रहेगी।

0: प्यार है तुमसे,
1: हाँ हाँ है,
0: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे,
1: हाँ हाँ। An Evening in Paris इस फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी ने गाया हुआ लिखा था, हसरत जयपुरी ने संगीत से सजाया था, शंकर जयकिशन ने। आसमां में जो बैठा है उसे मानव के रूप में इंसान ने धरती पर ज़रूर लाया है, जिसे भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो भी इसी आसमां की तरह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वास्तव में कभी भी देखा नहीं गया, पर हाँ उस पर विश्वास श्रद्धा जरूर रखी जा सकती है, मानव ने रखी है। जैसे आसमान दिखाई नहीं देता वैसे ही उस भगवान को कोई देख नहीं सकता, हाँ पर उसकी बनाई सृष्टि में ही हम रह रहे हैं। यह आकाश, यह अंतरिक्ष, स्वर्ग कवि की कविताओं का विषय बना, जिसकी खोज की जाती है पर वह मिलता नहीं, उस चीज की कल्पना की जाती है। उसी तरह कवियों ने आसमां पर कविताएं रची, कभी ये आसमां भी प्यार से झुक जाता है, कभी आसमां से फरिश्ते भी आ जाते हैं, तो कभी आसमां पे प्रियतमा को भी बिठाया जा सकता है।

दिल ने पुकारा। इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अदालत से, गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। दिल ने पुकारा में आप सुन रहे हैं आसमां पर आधारित कुछ गीत। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8। दोस्तों एक सहारा है आसमां, एक नीला और पहला सपना है आसमां, मनुष्य के अस्तित्व का कारण है आसमां। ये आसमां है जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, पर वह है मनुष्य के लिए। दोस्तों आसमां है, अंतरिक्ष के लहरों से ही तो हम जुड़े हैं एक दूसरे से। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास, जिसके जरिए सुन रहे हैं आप ये पुराने सुहारे मधुर नगमे। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास, आपकी जिंदगी, आपकी आवाज़।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: ये लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मुझे कुछ कहना है। मैं नहीं देख सकती किसी को उदास, बुझाती हूँ आंखों से आंखों के प्यार।

दिल ने पुकारा। इस प्रोग्राम में अभी आपने गीत सुना फिल्म नास्तिक से, गाया था हेमंत कुमार ने, संगीत से सजाया था सी रामचंद्र ने और गीत लिखा था प्रदीप ने। दोस्तों, आज आसमान पर आधारित गीत सुनेंगे। आज आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8। आसमान सब देता है, धूप वही देता है, छांव वही देता है, पानी वही देता है। आसमान पृथ्वी के ऊपर स्थित वायुमंडल की वह परत है, सतह से देखने पर एक गुंबद की तरह दिखाई देती है। यह परत हवा, मौसम, बादलों, खगोलीय पिंड को समाहत करता है। दिन में नीले रंग या यह दृश्य शाम में काला दिखता है, जिस पर अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं।

आज इस फिल्म से गीत आपने सुना, गाया था महेंद्र कपूर ने, लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत से सजाया था रवि ने। दोस्तों आज सुन रहे हैं कुछ आसमां वाले गीत। दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। आसमां ही स्वर्ग है जहां फरिश्ते रहते हैं, चंद्रमा सूरज वही रहते हैं, तारे बस्ती करते हैं। यह आसमां कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है कोई नहीं जानता। मनुष्य चांद पर जाकर आया, बाकी सारे तारों पर भी जाने की सोच रहा है। बड़ा ही संशोधन हो रहा है, अवकाश में उसने स्थानक भी बना रखा है, पर क्या सचमुच ये आसमान पर पहुंच जाएगा? बादल जमी पर भी उतरते हैं पर आसमां को कोई छू नहीं पाया है आज तक। दूरी से आसमां नाम के किसी अस्तित्व की चर्चा होती है, होती रहेगी।

0: प्यार है तुमसे,
1: कहाँ है
0: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे,
1: हाँ हाँ। An Evening in Paris इस फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी ने गाया हुआ लिखा था, हसरत जयपुरी ने संगीत से सजाया था, शंकर जयकिशन ने। आसमां में जो बैठा है उसे मानव के रूप में इंसान ने धरती पर ज़रूर लाया है, जिसे भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो भी इसी आसमां की तरह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वास्तव में कभी भी देखा नहीं गया, पर हाँ उस पर विश्वास श्रद्धा जरूर रखी जा सकती है, मानव ने रखी है। जैसे आसमान दिखाई नहीं देता वैसे ही उस भगवान को कोई देख नहीं सकता, हाँ पर उसकी बनाई सृष्टि में ही हम रह रहे हैं। यह आकाश, यह अंतरिक्ष, स्वर्ग कवि की कविताओं का विषय बना, जिसकी खोज की जाती है पर वह मिलता नहीं, उस चीज की कल्पना की जाती है। उसी तरह कवियों ने आसमां पर कविताएं रची, कभी यह आसमां भी प्यार से झुक जाता है, कभी आसमां से फरिश्ते भी आ जाते हैं, तो कभी आसमां पे प्रियतमा को भी बिठाया जा सकता है।

दिल ने पुकारा। इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अदालत से, गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। दिल ने पुकारा में आप सुन रहे हैं आसमां पर आधारित कुछ गीत। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8। दोस्तों एक सहारा है आसमां, एक नीला रुपहला सपना है आसमां, मनुष्य के अस्तित्व का कारण है आसमां। ये आसमां है जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, पर वह है मनुष्य के लिए। दोस्तों आसमां है, अंतरिक्ष के लहरों से ही तो हम जुड़े हैं एक दूसरे से। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास, जिसके जरिए सुन रहे हैं आप ये पुराने सुहारे मधुर नगमे। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास, आपकी जिंदगी, आपकी आवाज़।

चैन, बारह राती, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं।

0: प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा,
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं बिंदु बिंदु,
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
3: क्या

0: अब मैं चाहते हूँ।
1: अजी ये क्या कह रही हैं आप?
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: नहीं मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।
0: नहीं गाऊंगी।

0: करी थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन थाक दिनक दिन थाक तिनक तिन थाक।
1: आंख मिल जई है सजनिया से।

0: वाह वाह वाह वाह। पर वरी ये कौन सी ठुमरी है?
1: ये स्कॉटलैंड की ठुमरी।
0: स्कॉटलैंड की?
1: ये दो ही चीजें तो स्कॉटलैंड की मशहूर है, या ठुमरी या ठर्रा।
0: नशा आ गया। लेकिन मास्टर जी ये ठुमरी है या ठर्रा?
1: ये ठर।
2: चमकाने जी
1: ठुमरी चालू करता हूँ सेठ जी।
0: चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं
1: सेठ जी, आप जरा ठंडे हो जाइए सेठ जी।